0: मजा आएगा ना भिड़ो।
1: अपुन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे।
2: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
3: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय वन गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
4: कभी ऐसा लगता है कि decisions आप ले रहे हो पर results control में नहीं, career रुक सा गया है, रिश्तों में clarity नहीं और future बस एक सवाल बनकर रह गया है। हर जगह answers ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। Connect with Anita Chundru at The Colony, Texas. Chart reading, Vedic astrology, numerology aur Havan services se mile sahi guidance. Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
6: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
7: सब कुछ साफ रख सकते हो,
8: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
9: क्योंकि ये कौन बोला?
8: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
10: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
11: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean keeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
12: Aaja meri gaadi mein baith ja.
4: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
13: Wo thoda overheating tha.
4: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
14: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
15: इन प्लेनो।
14: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
16: क्या मतलब?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
16: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Hi, this is Sefali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Term restrictions apply. Equal housing lender and MLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
7: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम.
8: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे. लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं. लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है.
9: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13. कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग.
10: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को.
11: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फनेशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ. Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
12: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motor Works in Richardson. Expert European Auto Care. Precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motor Works. Engineered for excellence.
13: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
13: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
14: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
15: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
16: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
16: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
17: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Omar Khwaja, the official injury partner of Fun Asia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khwaja, your legal lifeline.
18: Chicken banana.
19: चिकन बनाना
20: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
21: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
22: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

Alrighty, you're tuned into 104.9 FM Fanasia Radio. This is your afternoon drive time with Sunehri Kiran, and this is Kids Junction. Aage badhte hue aapko bataye ji, the biggest South Asian grocery store in town, located in Louisville, Texas, is where you will find all your desi grocery, fulfill all your desi grocery needs. Pooja ka section hai, meat ka section hai, aur saath hi saath they have a delicious restaurant jo aapko bahut maze maze ke khane serve kar raha hai. To offers aajkal aapke liye chal rahi hai us restaurant ke upar. Sabse pehle तो ये कि एवरी वीकडे 5 बजे शाम से 9 बजे रात तक आपके लिए बोगो यानी कि बाय वन गेट वन फ्री की ऑफर चल रही है. सो मंडे या और वेंसडे को आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री ऑन बिरयानी, नूडल्स एंड फ्राइड राइस, जबकि ट्यूसडे और थर्सडे है तो आपको मिलेगा बाय वन गेट वन फ्री ऑन डोसास एंड चाट्स. तो जाइए 5 बजे से 9 बजे तक और कुछ मजे का खाइए, एक खरीदिए और एक बिल्कुल मुफ्त. सम टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, मिक्स एंड मैच नहीं हो सकता, वो आप जाके पता कर लीजिए. दिस इज देसी मंडी फॉर यू, द बिगेस्ट साउथ एशियन ग्रोसरी स्टोर इन टाउन. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट इज योर नेम? हेलो, कैन वी टॉक? ऑल राइट जी, बात ही कॉल ही खत्म हो गई है. चलिए, गाने मेरे पास बहुत सारे लाइंड अप है, एक एक करके वो गाने एज दे वर रिसीव्ड इन द नंबर ऑफ ऑर्डर, इन द ऑर्डर दैट इट वाज रिसीव्ड आपके लिए प्ले कर रहे हैं.

में गाँव है रेला ऊंचा पाँव यू पटका है ये देसी घमेला कैसा रहा यका यकी नाचो नाचो नाचो।

0: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फाइनेंशियल रेडियो. बिल्कुल सही जगह पे हैं आप. चैनल मत चेंज कीजिए. यह है आपका आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. 5 बजे तक आपके साथ मौजूद हूं. और आपको आगे बढ़ते हुए बताएं जी, अगर आप सोच रहे हैं ऑफ प्रिपेयरिंग योर USCIS पिटिशन बट यू नॉट श्योर वेयर टू स्टार्ट, सो वेदर इट्स एन H4EAD एक्सटेंशन या फिर F1 OPT एप्लीकेशन, या यू थिंकिंग ऑफ प्रिपेयरिंग योर ग्रीन कार्ड पिटिशन फॉर योर होल फैमिली, यू हैव अ प्लेटफॉर्म जहां पे आप बहुत ईजिली कन्वीनियंटली विद स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर सकते हैं. और वो जगह है या वो प्लेटफॉर्म है easypetition.com, EAZY easypetition.com. और यही नहीं, अगर आप अनफॉर्चुनेटली यू हैव लॉस्ट योर जॉब ऑन एन H1 एंड यू वांट टू प्रिपेयर अ चेंज ऑफ स्टेटस एप्लीकेशन, देन यू कैन डू दैट एट easypetition.com एज वेल. इट इज अ वेरी सिंपल वेबसाइट, गाइडेड है, डिजाइंड है फॉर इमिग्रेंट्स, ताकि वो अपनी एप्लीकेशन को कॉन्फिडेंटली प्रिपेयर कर सके. साथ ही साथ पूरा कंट्रोल हो आपके पास कि आप अपनी एप्लीकेशन को प्रिपेयर कर रहे हैं. सो easypetition.com पे लॉग ऑन कीजिए, चेक आउट देयर वेबसाइट, सी हाउ ईजी इट इज टू नेविगेट. एंड वाइल यू आर चेकिंग आउट, यानी कि जब आप अपना एप्लीकेशन तैयार कर लेंगे एंड यू आर चेकिंग आउट, तो प्रोमो कोड फनएशिया इस्तेमाल करना मत भूलिए टू गेट योर $30 क्रेडिट. दैट प्रोमो कोड वंस अगेन इज फनएशिया, FUNASIA फनएशिया. और दिस इज easypetition.com, चेक इट आउट.
1: जी और रब

And with that, it is time now to give you the weather update. Weather कहाँ stand कर रहा है जी? तो मौसम तो आप जानते ही हैं. पिछले दो दिन से बादल भी हैं, जगह जगह पे बारिश भी हो रही है, और आज भी कुछ ऐसा ही समा है. Friday, May the 1st, 4:42 p.m. in the studio, and city of McKinney में इस वक्त है 65 degrees, and it feels like 65 as well. आधे बादल से, 50% chance of showers, you know, पूरा दिन रहा. कुछ कुछ जगहों पे जैसे हमने कहा बारिश हुई, कुछ कुछ जगहों पे नहीं हुई. हाइज जो है वो अराउंड 60s डे, सो इट इज़ अ प्लेजेंट डे टुडे. एंड शाम जो है वो रहेगी मोस्टली क्लाउडी इन द इवनिंग, देन बिकमिंग पार्टली क्लाउडी विद द स्लाइट चांस ऑफ शावर्स इन द इवनिंग एज वेल. लोज होंगे अपर 40s में, सो इट्स गोइंग टू बी अ कोल्ड नाइट. सो अगर आप बाहर निकल रहे हैं, चूंकि आज वीकेंड नाइट है, लॉट्स ऑफ प्लान्स पीपल यू नो हैव, तो अपनी शॉल या अपना जैकेट या जो कुछ भी आपने लेना है वो हैंडी रखिए, स्वेटर, ताकि आपको ठंड ना लग जाए. बीमारी का बड़ा परफेक्ट टाइम होता है, क्योंकि हमारी बॉडी इज काइंड ऑफ गोइंग थ्रू सर्दी और गर्मी और कुछ समझ नहीं आ रहा. अच्छा, आज का पोलन काउंट इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट, 0.2, सो वेरी वेरी लो, नॉट टू वरी अबाउट एनीथिंग एट ऑल. यूवी इंडेक्स आज का 7 है, विच इज ऑल्दो बादल हैं लेकिन फिर भी यूवी, आजकल सूरज जरा चमक ज्यादा रहा है, तो 7 आज का यूवी इंडेक्स काउंट है. सनराइज आज का हुआ 6:38 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:08 PM. और इसी के साथ कल का मौसम जो मुझे नजर आ रहा है वो है जी सनी. सो इट्स गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल डे विद हाइज अराउंड 72 एंड लोज अराउंड 51. सो अगर ने जो भी कुछ करना है आपने, वो आप कल के लिए रख छोड़िए. कल और परसों संडे को भी कुछ ऐसा ही खूबसूरत मौसम है. सो वी आर हेडिंग ऑन इनटू समथिंग वंडरफुल फॉर टुमारो एंड डे आफ्टर.

इस गाने पे जाते हुए आपको वेदर अपडेट दे रही थी. दैट वेदर अपडेट वाज ब्रॉट टू यू बाय मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स. और अब टाइम है आपको करेंसी अपडेट देने का कि यूएस डॉलर कहाँ स्टैंड कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू अदर करेंसीज इन द वर्ल्ड. तो इस वक्त यानी कि मे 1st फ्राइडे 4:46 PM इन द स्टूडियो एंड अकॉर्डिंग टू xrates.com यूरो ट्रेड कर रहा है 0.85 पे, जबकि ब्रिटिश पाउंड इज ट्रेडिंग एट 0.73. इंडियन रुपी 94.87 पे स्टैंड कर रहा है, जबकि पाकिस्तानी रुपी इज ट्रेडिंग एट 278.80. नेपाली रुपी 151.87 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बांग्लादेशी टका 122.72 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर 1 US डॉलर. और इसी के साथ गोल्ड प्राइस अपडेट आपको देते हैं जी. इस वक्त अकॉर्डिंग टू goldprice.org एक आउंस गोल्ड की कीमत है $4,615.24, जबकि एक ग्राम सोने की कीमत $148.38. कल की निस्बत एक ग्राम सोने की कीमत में 6 सेंट्स की कमी देखने को मिली, जबकि एक आउंस सोने की कीमत में $1.69 की कमी देखने को मिली. बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स राइट हियर ऑन सुनहरी किरण.

ऑल राइट जी, विद दैट मैं आपको जल्दी से बता दूं कि ट्रैफिक में हमें क्या नज़र आ रहा है ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. देयर आर टू कोलिजन्स जो नज़र आ रहे हैं अभी कोई आधे घंटे पहले रिपोर्ट हुए हैं. वन इज़ एट 6:35 टूवर्ड्स जुपिटर रोड ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से टू लेन्स आर ब्लॉक्ड. द सेवेरिटी ऑफ द इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई. लॉट्स ऑफ बैकअप इज पाइलिंग अप. अबाउट आधा घंटा पहले ये इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ है, सो अभी आपको वहाँ पर काफ़ी सारी ट्रैफिक डेफिनेटली नजर आएगी, बिकॉज ऑफकोर्स एक तो मौसम ऐसा है और ऊपर से ट्रैफिक आवर या रश आवर चल रहा है. अनदर कोलिजन इज रिपोर्टेड एट 75 यूएस 75 टूवर्ड्स गैलटन पार्कवे साउथ बाउंड, जिसकी वजह से थ्री लेन्स आउट ऑफ सेवन आर ब्लॉक्ड, कॉजिंग अ लॉट ऑफ बैकअप एट दिस स्पॉट एज वेल. तो अगर आप इन दो स्पॉट्स में से किसी पे पहुंचने वाले हैं तो कुछ आपको डिलेज मिलेंगे, बिकॉज दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड अराउंड हाफ एन आवर अगो एज वेल. सो काफी बैकअप यहाँ पे नजर आ रहा है, एंड यू आर एडवाइज टू प्रॉबेबली टेक डिटूर्स और बी विजिलेंट एंड बी पेशेंट वेन यू आर हियर. बट दैट्स वेरी मच ऑल दैट आई कैन सी वेयर ट्रैफिक इज कंसर्न ऑन द रोड्स ऑफ डैलस. तो अब जो है इसी के साथ मैं आपको इंसिडेंट तो बता दिया आपने. एक हम नया सेगमेंट से ऐड करेंगे और वो पहले मैंने किया था, उसके बाद बीच में बहुत कुछ चल रहा था तो छूट गया कि एएमसी में नई फिल्में हर फ्राइडे को आपको मैं बताती हूँ कि कौन सी हॉलीवुड की फिल्म्स रिलीज हुई हैं. आज है May 1st और आज अबाउट 5-6 मूवीज रिलीज हुई हैं थिएटर्स में, जिनमें से कुछ तो बहुत ही ज्यादा एंटिसिपेटेड हैं, जैसे कि द डेविल्स वेयर प्राडा 2 दैट इज रिलीज टुडे एंड एवरीबॉडी इज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू द मूवी. दिस इज ऑफकोर्स अ सीक्वल और जो भी आप कह लीजिए उसी थीम पे बनी है, ऑफ डेविल वेयर प्राडा 1. सारी कास्ट भी वही है. दैट इज अ कमाल की बात कि डेविल वेयर प्राडा 1 की सारी कास्ट को इन्होंने डेविल वेयर प्राडा 2 में लेके आए हैं, अलॉन्ग विद अनदर लीडिंग लेडी जिनको हमने ब्रिजटन में देखा था, ब्रिजटन 2 में. Other than that, another movie that is released today and playing in theaters near you is Hokum. This is probably a horror movie aur isko bhi kafi actually raving reviews mil rahe hain. So Rotten Tomatoes ke hisab se it is 86% positive reviews. There is another movie that has been released today. It is Animal Farm, jo ke ek Animal Farm traces how a movement for equality is systematically corrupted. To ye aapke liye ek aur movie hai, ek aur movie horror mein hi genre mein release hui hai, and that is Cabin Fever 4K director's cut. And this is, I think, a re-release of an old movie, which was Relive the Horror. Another movie, Deep Water, has released today, May 1st. And Everything, Everywhere, All at Once. This is a sci-fi film that has released today in theaters near you. So, aap dekh sakte hain ye tamam movies jaake. And one more movie, again, in action genre mein release hui hai. This is RZA's One Spoon of Chocolate. Ye hai aapke liye wo tamam filmein jo AMC theaters mein हॉलीवुड की रिलीज हुई है. अगर आप हॉलीवुड मूवीज देखना पसंद करते हैं, सो दिस वॉज अ लिस्ट ऑफ ऑल दोज मूवीज फॉर यू.

इस गाने की वीडियो देख के मुझे हंसी इसलिए आती है क्योंकि बात हो रही है काली चोटी और लाल परांदे की, और तीनों लड़कियां जो इसमें परफॉर्म कर रही हैं सबके बाल खुले हुए, किसी ने ना चोटी बांधी हुई है, ना ब्रेड बांधा हुआ है, ना परांदा लगाया हुआ है. सो दैट वाज द फनीएस्ट मोमेंट. गाना जो है वो बाल चोटी और परांदे का है. एनीवेज जी, द न्यू सेंसेशन. और अब इट्स टाइम फॉर मी टू रैप अप. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. मंडे को मिलूंगी आपसे एक बार फिर 2:30 PM टू 5 PM मंडे टू फ्राइडे. आई एम हियर विद यू ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. Drive safe, be careful, and enjoy your weekend.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Hi, I'm Vijay Karthik. I've served as a global C-suite executive, led thousands of employees, advised boards, and earned industry recognition for innovation and leadership. My career spans decades of responsible governance, strategic planning, and delivering results at scale. That level of experience is rare in local government. Fisco deserves its most qualified leader, someone prepared from day one. Vote Vijay Karthik for Fisco City Council Place 5. For more information, you can check out my website at www.vjforfisco.com. This is Vijay Karthik and I approve this ad.
3: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
4: Arre relax, sab tumhara hi to hai.
3: Sach? Ya phir court decide karega?
4: Wait, what?
5: Yes, agar proper estate plan nahi hai, तो आपकी फैमिली के decisions कोर्ट लेता है।
6: Hi, this is Deepti Verma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में the right way with estate planning.
5: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए. Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
7: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
5: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
8: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
9: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
8: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
10: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
5: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
15: Ready to turn up the heat? Introducing our Achari Paneer Pizza, where bold Indian spices meet cheesy perfection. Think tangy pickle flavors, a dash of chili and soft paneer cubes, soaking up every bit of that spicy magic, all on a hot, fresh crust straight from the oven. It's not just a pizza, it's a flavor explosion with every bite. If you dare to try something bold, come grab your Achari Paneer Pizza today, only at Fun Pizza Kitchen, where tradition meets the oven. Fun Pizza Kitchen, flavor that fires you up.
16: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

आज का सीन सिंपल है, म्यूजिक मस्ती और मैं। नाम तो सुना होगा, नवनीता। गाने होंगे, गॉसिप होगा, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़े गेम्स, थोड़ा नया स्वैग होगा, मतलब फुल ऑन।

I love the plan. Thank God it's Friday. With me, Navneeta. 5 se 8, straight from the heart. Thank God it's Friday. Thank you, dosto. Tune in karne ke liye 104.9 FM Fun Asia Radio par. शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद. मैं हूं आपकी होस्ट नवनीता और आप सुन रहे हैं थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. और ये आता है फ्राइडे के फ्राइडे. ओ माय गॉड, नो पॉइंट्स इन गेसिंग कि यार ये फ्राइडे के फ्राइडे कैसे हो सकता है, क्योंकि इट इज़ थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. हो सकता है आपका हफ्ता बहुत भारी भरकम गया हो, बट इज़न्ट थैंक गॉड इट्स फ्राइडे द एक्साइटमेंट अबाउट द भारी भरकम वीक जो गया हो तो गया हो, बट नाउ वी आर टोटली आउट ऑफ दैट वीक एंड एंजॉय द वीक, बिकॉज जो बीत गई सो बात गई. आज को बिल्कुल बिकॉज ऑफ द स्ट्रेस ऑफ द वीक यू कैन नॉट लेट इट रूल यू.

0: Super se upar. That's the beauty. That's the song from Dhurandhar. दोस्तों, किसी ने कहा है, कद्र कर जता मत, फिक्र कर दिखा मत, तू चाहता है कि दोस्ती रहे, मोहब्बत कर बता मत. With that beautiful thought, बढ़ाते हैं अपना शो. एंड थैंक यू, बिग शाउट आउट गोइंग आउट टू किरण फॉर सच एन अमेजिंग शो. मंडे टू फ्राइडे आपका ख्याल रखते हैं, आपको एंटरटेन करते हैं, 3 to 5 का शो. और अब 5 to 8 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट इज माय शो. वेलकम दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, कैमो नाचो केम छो. मैं हूँ आपकी होस्ट नवनीता, रहूँगी आपके साथ ये शाम, विच इज़ द फ्राइडे नाइट, फ्राइडे इवनिंग, जो भी कह लें, क्योंकि आई से एंड आई ब्रिंग द वीकेंड मूड विद मी. With us, thank God it's Friday. There's a Jabra fan of Funasia Radio. हमेशा सुबह शाम दिन रात रोजाना और हफ्ते सुनते हैं हमारा ये amazing radio frequency 104.9 FM. और वो हैं हमारे Jabra fan, उनके लिए dedicated this song because this is his heart pouring out to Dallas for Funasia Radio.
1: समझ नहीं है, वो स्टार नहीं है, दुनिया है मेरी.

तो वैसे इसलिए होते हैं कि दिल आ जाता है, और दिल इसलिए भी आ जाता है कि सामने में इतना कुछ होता है जिसके ऊपर दिल आ जाता है। जैसे कि आप हो सकते हैं फैन हमारे ड्रीम होम मोर्गेज के, क्योंकि वो हमारे फैमिलीज को सालों से हेल्प कर रहे हैं। सालों मतलब 1998 से सालों हो गए ना। एंड दे आर लाइसेंस इन ऑल 50 states, सो दे आर एक्सपर्ट्स इन वॉट एवर दे गिव, वॉट एवर दे डू फॉर ऑल ऑफ अस। एंड इसी वजह से इतने साल की उनकी मेहनत इतनी रंग लाई है कि एवरीबडी ट्रस्ट हिम एंड देम कम्प्लीटली, एंड द एक्सपर्ट टीम डिलीवर स्ट्रेस फ्री टेलर्ड मोर्गेज सोल्यूशंस। तो है ना आप फैन? अगर हैं तो मेक योर ड्रीम होम अ रियलिटी विद ड्रीम होम मोर्गेज। डिटेल्स के लिए फोन उठाइए, नंबर दबाइए 972-245-5626। यू कैन ऑल्सो विजिट dreamhomemortgage.com। फैन तो वैसे हमारे फनीजा के भी इतने सारे फैंस हैं, और रेडियो सुनते सुनते अपने जो दिलदार अपने लव वंस को चाहते हैं वो भी they take Fanisha as the tool to express their emotions. A call from Mariam, and she's wishing and dedicated this song to Somar, her boyfriend. She says, Fanisha, radio ke zariye main apne Somar ko ye gana bhet karna chahti hun. She is Mariam. Hey guys, enjoy this song. What a beautiful dedication.

0: beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
1: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
2: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
3: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
4: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
5: Kaun sa?
4: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
5: अरे सारे तो सेम है।
4: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
5: ओ हाँ, ये तो अलग है।
6: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
7: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
6: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
8: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्ट एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
10: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था। ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक। फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया। उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले। हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
6: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा। आपका हक, उनके जिम्मेदारी।
11: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
12: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
11: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
13: Discover the magic of authentic Indian vegetarian cuisine at Sarvana Bhavan, the world's number one in South Indian delights. Their menu, overflowing with veggie surprises cooked to perfection. After serving in Irving and Plano, ping them at 469-362-7755 or visit sarvanabhavanplano.com. Sarvana Bhavan, all day flavor play.
6: All locations are open daily from 11 a.m. to 10 p.m. with extended hours on weekends from 8:30 a.m. to 10:30 p.m.
14: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
15: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
14: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
15: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
6: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
16: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
17: वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है सबका 104.9 FM फन एजर रेडियो पर। ये एक गाना सोमवार को डेडिकेटेड था मरियम की तरफ से। ये गाने के बीच में पता नहीं कहाँ से हमारा ब्रेक आ गया, बट यू नो इन्फॉर्मेशन नीड्स टू बी एक्सेप्टेड एंड गैदर्ड। लेकिन उसका जो ब्रेक के बाद गाने का समय है उसमें गाना और बच सकता है, सो हियर यू गो।

सुपर डुपर 104.9 FM। पता है ये जो भूत वाली फिल्में होती है ना, उसमें हमेशा आपको हवेली में ना एक रामू काका जरूर मिलेंगे। पर सोचने की बात यह है कि इस रामू काका को सैलरी कौन देता है, और उन पर कोई भूत कभी अटैक क्यों नहीं करता यार? जितने गेस्ट आते हैं उनको पर तो उनको ले उठा के ले जाता है, पर ये रामू काका तब से एक एंटिक पीस जैसे हैं, विदाउट सैलरी और विद आई डोंट नो, बट देता कौन होगा? सोचने की बात है। चलिए आप सोचिए, और अगर आपको पता चल जाए तो जरूर फोन उठाइए, नंबर दबाइए, मुझे बताइए कि ये रामू काका को सैलरी कौन देता होगा। रामू काका को जो भी सैलरी दे, लेकिन अगर आपको फिर भी सैलरी से ऊपर हटना है और फिनेंशियल गाइडेंस की जरूरत है, तो फिर वो मैं बता सकती हूँ। पहले सैलरी तो आए, फिर फाइनेंशियल गाइडेंस, करेक्ट। तो रामू काका को इनकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आपको पड़ सकती है। माई टाइम इक्विटी लेड बाय CPS सुधीर पाई ऑफर्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट एंड अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। आप विजिट कीजिए mytimeequity.com या फिर फोन उठाइए, नंबर दबाइए 4697021272। और बस क्या करना है, मिलना है आपको एक अमेजिंग फाइनेंशियल गाइड से जो आपको गाइड करेंगे पूरी तरह। एक रिक्वेस्ट आई है मेरे लिसनर से, एंड ही इज मिस्टर सैम, जो आपको पैसा दे रहे हैं या ले रहे हैं, बट ये हैं हमारे डैलस के सैम। आसमान खींच रहा है आपकी फोटो आज विद द थंडरस्टॉर्म, स्माइल जरूर दीजिएगा।

तो मैंने कहा ना, आसमान आज आपकी फोटो खींच रहा है, सो चेक दोज क्लिक्स व्हेन देयर इज दैट लाइटनिंग लिटिल बिट. और फिर एक स्माइल देना जरूर से मत भूलिएगा, बिकॉज आई ऑलवेज से ओ माय गॉड, गॉड इज टेकिंग माय पिक्चर्स एंड आई हैव टू स्माइल टुडे. जिंदगी एक है, दो बार क्या सोचना दोस्तों. स्माइल अभी है, कल के लिए क्यों रखना दोस्तों. जब जिंदगी आज जी ली है, कल तो बेटर होना ही है दोस्तों. वाओ, दैट वाज लवली. थैंक यू सो मच ट्यून इन करने के लिए. अभी हम इस गाने के बाद एक बहुत ही खास खास सेलिब्रिटी का जन्मदिन मनाने वाले हैं, लेकिन दिस वन ब्रांड न्यू सॉन्ग पति पत्नी और दो से. वो दो, पति पत्नी और वो दो, मतलब टू को वो दो कर दिया है. पति पत्नी और वो एक नहीं दो,

डोंट यू थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, ऐसा तो अपने आप ही जैसे निकल ही जाता है, थैंक गॉड फ्राइडे आ गया है. सैटरडे संडे छुट्टी, फ्राइडे से ही वो वीकेंड का फील आना शुरू हो जाता है. सो आई से द वीकेंड हैज ड्रॉप्ड विद माय शो. और अब स्टार कलाकार को मुबारकबाद देने की बारी आ गई है. बट आई सेलिब्रेट वन और मोर कलाकार्स हु आर सेलिब्रेटिंग देयर बर्थडे दिस वीक. लेकिन हमारे स्टार, हमारे डैलस के स्टार है जो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपना जन्मदिन, ज़रूर फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा. एक है जो हमारे वेरी वेरी हार्ड कोर लिसनर, वेरी लव्ड इन डैलस, और फनीजा को, फनीजा के सारे आर्जेस को ये बहुत प्यार करते हैं. इनका जन्मदिन तो बनाना बनता है. 39 इयर्स के हो गए हैं हमारे वेरी आर्जेंट लिसनर सफ़ी. अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू सफ़ी. एंड सफ़ी के लिए ये वाला गाना डेडिकेटेड है जो उनका फेवरेट फेवरेट गाना रहे हमेशा. ही मस्ट हैव आस्क्ड लाइक अमटीन ऑफ टाइम ऑल द आर्जेस टू प्ले द सॉन्ग. और जब ये आया था तब तो हर एक आरजे के शो पर ये गाना बजता था बिकॉज सफ़ी वुड बी कॉलिंग एंड रिक्वेस्टिंग. बट सफ़ी आप आज 39 ईयर्स के हो गए हैं, जस्ट वन शॉट ऑफ दैट माइल स्टोन बर्थडे. सो यस, वी विल सेलिब्रेट द होल ईयर टिल यू रीच 40. बट हियर इज योर सॉन्ग ऑफ द इवनिंग.

0: This Radha has danced a lot and a very, very happy birthday to Safi with that song. दोस्तों पता है आज स्टार कलाकार को जन्मदिन की बहुत भारी बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड हियर वी आर सेलिब्रेटिंग अनुष्का शर्मा फर्स्ट में एक महीना बीत गया ये तो साल भी बीत ही जाएगा 2026 में हमने कदम रखा है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई में आ चुके हैं हम मई में हैं आप किस में हैं हम तो मई में हैं तो मई में फर्स्ट मई को अनुष्का शर्मा का जन्मदिन होता है एंड यार शी वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट लाइक यू नो अ रेडियो जॉकी कुड बी अ जर्नलिस्ट इफ दे आर डूइंग जर्नलिज्म बट नॉट ऑल जर्नलिस्ट आर रेडियो जॉकीज एंड नॉट ऑल रेडियो जॉकीज आर जर्नलिस्ट हाँ डोंट मिक्स देम अप जर्नलिज्म इज जर्नलिज्म आर जे रेडियो जॉकी इज रेडियो जॉकी बट अ जर्नलिस्ट कैन बी रेडियो जॉकी एंड द वाइस वर्सा तो ये एक्टर हो वो तो बात आती ही नहीं है अनुष्का शर्मा प्रायर टू बिकमिंग अ मॉडल एंड एक्ट्रेस शी वाज ओरिजिनली वांटेड टू बी अ जर्नलिस्ट घूमी थी बहुत घाट घाट का पानी पिया है इन्होंने क्योंकि इनके जो डैड रहे हैं आर्मी कर्नल और उनकी मॉम होममेकर थी बट बिकॉज हर फादर वॉज इन द आर्मी शी हैड मूव्ड अ लॉट अराउंड बिफोर टर्निंग 18 उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ इनका लेकिन शी ग्रू अप मोस्ट ऑफ अ लाइफ इन बैंगलोर देन शी मूव टू मुंबई इन 2007 टू परस्यू अ मॉडलिंग करियर ये वैसे नेपो किड नहीं है आर्मी किड हैं इनको फिल्मी कुछ भी धरोहर में नहीं मिला है शी हैज़ गेन्ड इट हरसेल्फ एंड शी सेज आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट आई एम एन Army officer's daughter, even more than being an actor. उन्होंने एक बार ये बहुत ही शान से कहा था because she says, that's what makes me grounded, that's what makes me, why not? चलिए वो राधा थी अभी अभी आपने सुना और एक ये राधा है अनुष्का शर्मा
1: मैं कनाडा भाग गया सिंगर बन
2: रात बराती गंधा कोठे टप टप के जाना तू सोखा समझे लगिया दौड़ निभाना
1: तेरी बात

0: Nice. Sweet. Sister type. थोड़ा गरम गा सकती है?
1: देख, मैं बताऊँ।

real. Now, वैसे अनुष्का शर्मा, absolutely the way she behaves, the way she is, of course the army girl, army dad girl, I would say she was never in the army. पर you know वैसे ही विराट कोहली इनके बेटर हाफ इज द क्रिकेटर, और दोनों की जोड़ी क्या कमाल की, बिगेस्ट फैन फॉलोइंग दैट दे हैव टू टुगेदर मेक ह्यूज ह्यूज फैन फॉलोइंग ऑफ इंडिया. हमारा तो यू नो इट्स काइंड ऑफ रिलीजन व्हेन इट कम्स टू क्रिकेट. और विराट कोहली और अनुष्का शर्मा सोचिए शादी करें और शादी में बुलाना चाहें बस 42 पीपल को. They wanted a very intimate wedding with just their close family and friends in Tuscany, Italy. तो अब तो ये दोनों वहाँ पहुँच गए, शादी की अरेंजमेंट्स हो रही है. और अनुष्का और विराट सच ह्यूज नेम्स कि अगर अनजान आदमी को भी वो कॉन्टैक्ट करे फॉर एनी थिंग, फॉर केटरिंग, दे वुड बी एबल टू जस्ट पुट देयर नेम्स इन एंड गूगल देयर नेम्स. तो अनुष्का वॉज टॉकिंग इन एन इंटरव्यू और उन्होंने बताया था कि यू नो हम लोगों ने ना फेक नेम्स भी बना लिए थे अपने, क्योंकि ये फेक नेम से लोगों को लोग हमें गूगल करते कि कौन है, दे वुड सर्च फॉर अस एंड दे कुड नॉट फाइंड अस. तो ऐसे सोच रही थी और बता रही थी उस जर्नलिस्ट को जो उनका इंटरव्यू ले रही थी, बताती हैं कि आई थिंक विराट वॉज राहुल, और राहुल को आप कितना भी सर्च कर ले कोई भी राहुल निकलेगा, हमारा विराट कोहली के चेहरे वाला राहुल नहीं मिलेगा. बट दिस वॉज नॉट चेहरे वाला, बट वेन दे स्पोक टू द केटरर्स ओवर द फोन दे जस्ट गेव फेक नेम्स so that you know when they were preparing for their wedding in Tuscany, Italy, and they just wanted to have 42 people, they did not want to be recognized and searched and followed. That's how much precaution they took. And this very very beautiful Anushka Sharma and so many amazing movies that she's given to us. बहुत लोगों ने इन्हें कंपेयर किया है बिकॉज ऑफ हर पॉपुलैरिटी. ये जो अमेजिंग अनुष्का शर्मा है विद प्रियंका चोपड़ा एज वेल, उसके बारे में मैं इस गाने के बाद बात करूंगी. बट ये दोनों की दोनों इस फिल्म में थी, दिल धड़कने दो.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
7: एग्जैक्टली exactly. और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
6: ओ गॉड, पहले आउटफिट, फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
7: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
6: कैसे?
7: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
6: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
7: या कैरेट लेन काइंड.
8: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco. 3 minutes, that's how long it takes to sign up with Bezit. They challenge your property tax appraisal, build the case, go to the hearing. You just wait for the result. 89% of customers get a reduction. Average savings over $1,100. Call in and Denton County. May 15th is your last day this year. Bezit.co.
7: पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
9: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
7: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
10: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
11: इन प्लेनो.
10: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
14: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
13: के टू ड्राइव मतलब?
14: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, EFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब के टू ड्राइव हैंडल करता है.
13: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
14: 100%
15: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट के टू ड्राइव डॉट कॉम और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
16: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है.
8: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स. मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग.
17: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपने कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहाँ हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस.
18: इनएफिशिएंट मैन,
19: वेरी कॉम्प्लेक्स,
18: क्लमजी होए.
19: अरे कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है अबे.
8: Disjointed software को यूज करना इतना इजी नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे सॉफ्टवेयर से छुटकारा पाओ. अपने बिजनेस के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite, जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेकर customer support, accounting, operations या HR. काम एक, सॉफ्टवेयर एक. Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
20: Hi, this is Rani Mukherjee. You are listening to Fun Asia Radio.

वेलकम वेलकम बैक 104.9 FM फनी जरी जो सुन रहे हैं और यहाँ पर स्टार कलाकार को मुबारकबाद दिया जा रहा है एंड चलते हैं उन्हीं के साथ चार कदम नन्ना ददन अनुष्का शर्मा. आप किसी का जन्मदिन हो तो फ़ोन उठाएगा, नंबर दबाएगा 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. थैंक गॉड इट्स फ्राइडे. सुन रहे हैं आप मेरे साथ, मैं आपकी हूँ नवनीता.

celebrating Anushka Sharma, and this is the last segment of hers. A very happy birthday to Anushka Sharma. Vaise Virat Kohli, Anushka Sharma do make a power couple. They are beloved duo whose slightest gestures gushed over by the fans. Matlab, sare ke sare mugdh ho jate hain. Vaise, you know, Virat Kohli ek interview mein bahut cute apni baat keh rahe the about Anushka Sharma. This is before they got married. Dono ki ek shoot thi where Virat Kohli and Anushka Sharma were shooting for an ad. तो कहते हैं मैं विराट कोहली कहते हैं मैं अनुष्का के सामने खड़ा था. अनुष्का इज़ रियली रियली टॉल. तो बहुत नर्वस हो रहा था मैं वहाँ पर खड़ा था एंड मुझे एकदम भी समझ में नहीं आ रहा था हाउ टू ब्रेक द आइस. सो आई सेड समथिंग वेरी सिली. मैंने उसे देखा और कहा कुंड यू हैव वोन हायर हील्स एंड आई थॉट इट वॉज वेरी फनी क्योंकि वो इतनी टॉल है कि आई सेड कुंड यू हैव वोन हायर हील्स. अनुष्का ने मुझे गौर से देखा एंड शी लुक्ड एट मी एंड सेड एक्सक्यूज मी. उसी समय मुझे समझ में आ गया कि आई फेल लाइक ए कम्प्लीट इडियट. विराट कोहली कहते हैं एंड मुझे लगा ये पूरा मिसफायर हो गया. इट वॉज अ जोक एंड उसने बोला वॉट एक्सक्यूज़ मी क्योंकि शी वॉज टॉल. बट आई एम श्योर शी ऑल्सो द एक्सक्यूज़ मी रिएक्शन वॉज ऑल्सो लाइक यू नो जस्ट नॉर्मल. बट विराट कोहली भी विराट कोहली शी वॉज इंटिमिडेटेड. यही तो मोहब्बत में बदल गई फिर शादी तक पहुँच गए. अनुष्का शर्मा डजंट लाइक पपराजी. उनके तो किस्से बहुत सारे किस्से भी फेमस है. एक बार वो प्रेस से बचने के लिए ना शी जम्प्ड ओवर रेलिंग टू अवॉइड द पपराजी. सो दैट इज़ आवर अनुष्का. बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें वो इंटरव्यूज में भी आती है ना तो बोलती है. एंड आई एम लाफिंग बिकॉज आई एम थिंकिंग ऑफ दिस व्हेन शी हैड टोल्ड वंस. तो एक बार क्या होता है शी वाज डूइंग अ इंटरव्यू फॉर विद अ जर्नलिस्ट. तो जर्नलिस्ट शायद उठ के कहीं गई थी और फ़ोन बज रहा था और वो जर्नलिस्ट की नज़र में नहीं आया कि फ़ोन बज रहा है. अनुष्का ने फ़ोन उठा लिया और उस जर्नलिस्ट के फ़ोन को आंसर किया हेलो. तो जर्नलिस्ट की मॉम थी उस साइड एंड शी स्पोक टू हर मॉम. I mean, celebrity tantrums kind, nahi hai. She's so grounded. Wishing Anushka a very, very happy birthday. Thirty-eight years ki ho gayi hai aaj.

0: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
1: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
0: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
1: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
2: इमिग्रेशन अटॉर्नीज इन द DFW area. If you're looking to grow your client base and reduce your overheads, join One Asia Media Group for an exclusive short seminar designed only for you. Discover how Fun Asia can deliver a steady stream of qualified clients while helping you cut costs on paralegal work and routine filings. Plus, enjoy a complimentary lunch on us. Seats are limited. Please email your interest to immigration@funasia.net to reserve your spot.
3: चिकन बनाना
4: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट।
5: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
6: Beta, itni der se baithe ho, homework hua?
7: Mama, koshish to kar raha hu, par samajh mein nahi aa raha.
6: रोज का सेम प्रॉब्लम।
0: जब कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते तो बच्चे कंफ्यूज ही रहेंगे। लुमडी लर्निंग सेंटर, जहां बच्चे रटते नहीं समझते हैं। लुमडी का कस्टम करिकुलर फ्रिस्को, प्रॉस्पर एंड मकिनी ISD स्टैंडर्ड्स को मैच ही नहीं एक्सीड करता है।
8: पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लान्स इन मैथ एंड इंग्लिश फॉर किड्स एज्ड 5 to 13, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर स्टेप पर स्ट्रॉन्ग क्रिटिकल थिंकिंग।
0: कन्वीनियंटली लोकेटेड एट कोएट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को।
5: कॉल 972-666-1181 और मेंशन करें फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ। Lumity Learning Center. Build mastery. Unlock potential.
9: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
10: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
9: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
10: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
9: ये क्या होता?
10: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
5: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
11: कभी ऐसा लगता है कि डिसीजंस आप ले रहे हो पर रिजल्ट्स कंट्रोल में नहीं, करियर रुक सा गया है, रिश्तों में क्लैरिटी नहीं और फ्यूचर बस एक सवाल बनकर रह गया है।
5: हर जगह आंसर्स ढूंढने से बेहतर है सही जगह समझना। कनेक्ट विद अनीता चुंद्रू एट द कॉलोनी टेक्सिस। चार्ट रीडिंग, वैदिक एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और हवन सर्विसेज से मिले सही गाइडेंस। कॉन्टैक्ट 9453387670। Email astro111city@gmail.com. Anita Chundru, your life with right direction.
12: Contact 945-338-7670. Email astro111city@gmail.com or visit taxi at 5200 Memorial Drive, Colony, Texas.
13: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
14: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
13: Kya matlab?
14: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
13: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
14: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
13: Ab to karna hi padega, madam.
15: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

स्वागत नहीं करोगे मेरा? बिल्कुल, दैट वॉज अ वेरी वेरी फाइन बर्थडे सेलिब्रेशन फॉर अनुष्का शर्मा. आप किसी का जन्मदिन हो तो ज़रूर फ़ोन उठाइएगा, नंबर दबाइएगा, मुझे बताइएगा. दैट विशेज कैन गो आउट ऑन एयर एनी टाइम मैनी टाइम.

That was from Cocktail 2. सुन रहे हैं 104.9 FM Fun Asia Radio. पता है दोस्तों, एक बार क्या होता है, बस पर एक दर्जी चढ़ता है, दर्जी यू नो टेलर, और इतनी देर में उसके पास एक कॉल आता है, और तभी उसका फोन उठाता है उस दर्जी और जोर से बोलता है, तू ना हाथ काट के रख, गला मैं आकर काटूंगा. ये सुनकर सारे के सारे जो पैसेंजर्स है ना उतर जाते हैं डर के मारे, यू नो. चेलू राम एक्चुअली बेहोश. ही वेक्स अप एंड व्हेन ही रीचेस मी ही टेल्स मी, पता है आज हमारे बस में ये हुआ. बाद में पता चला वो एक दर्जी था. सीरियसली, मैं अगर ऐसे आप कोई भी बात पर यू हैव एवर फेल ऑन अ कॉन्वर्सेशन बाय मिस्टेक एंड फोन में जो बात हो रहा है एंड यू आर लाइक रियली, तू हाथ काट के रख, गला मैं आकर काटूंगा. रियली रियली फनी. सुन रहे 104.9 FM फनी जर रेडियो. सफर मेरा है तू.

सुन रहे 104.9 FM फर्नीचर रेडियो सुन रहे थे हम ए दिल है मुश्किल, और ए दिल है मुश्किल में आ गया बुलिया. सो दैट वाज अ मिक्स दैट हैपेंड. आई एम सो सॉरी अबाउट है दैट. चलिए हम ए दिल है मुश्किल को ही कंटिन्यू करते हैं विद द राइट मूड, राइट एटमॉस्फेयर एंड राइट लिरिक्स. इधर उधर भटकते नहीं हैं.

माइंड तू करे ब्लो, बाकी करे शाइन तू करे ग्लो। जीन्स डाली डाली तूने जो वो तेरी बूटी पे टाइट बेबी जैसे मेरा फ्लो। बेबी गॉड डैम तू है 100 बाकी एवरेज, तू है सैवेज बेबी तू है रॉ। मुझे तेरी बारी की हर वो चीज लगे सेक्सी जो बाकियों को लगती है फ्लॉ। बेबी लेट्स गो राइट नाउ, देखो मुझे वेट ना इतने कराओ। लक तेरा लीन बात तेरी मीन, टाइटन पे है तो क्यों खाती भाव।

कितना तारीफ चाहिए बताइए आप, कितना करूं मैं. आप हमारे सारे लिसनर्स, यू आर द बेस्ट, यू आर द मोस्ट हैपनिंग, यू आर आवर लव एंड वी लव यू सो मच. और आपके बगैर हम कुछ नहीं, हमारी जिंदगी कुछ नहीं. थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए. फर्नीचर रेडियो सुबह शाम दिन रात रोजाना हर हफ्ते आते हैं हंसते हंसते और चाहते हैं बस आपकी एक मुस्कान. तो कितना तारीफ सुनना चाहेंगे आप, इतनी तारीफ हो चुकी है आपकी जिसी की वजह से आपने जो तारीफ की है हमारी, वी हैव मूव फ्रॉम वन रेडियो स्टेशन टू फाइव. इज इन दैट तारीफ इनफ. फन एशिया 104.9 एफएम, फन एशिया रेडियो को तो आप सालों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आप ही के प्यार ने ले कर दिया हमारा मनोवृत्ति और हम लेकर आ गए और भी चार रेडियो स्टेशन. तेलुगु में रेडियो संगम, वनक्कम एफएम इन तमिल, अपना पंजाब इन पंजाबी, एंड रेडियो कारवा अनदर रेडियो स्टेशन विच इज़ हिंदी. सो देयर यू आर, यही तो प्यार से इकरार से हमने एक से एक मिलाकर इतने सारे रेडियो स्टेशंस कर लिए. एंड ऑल द थैंक्स गोज आउट टू यू, योर लव एंड योर डेडिकेशन टुवर्ड्स अस. थैंक यू सो मच सुनने के लिए हमें सुबह शाम दिन रात.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: Drive a BMW, Mercedes or Audi? Then don't trust it with just anyone. German Motorworks in Richardson, expert European auto care, precision diagnostic and top tier service. All under one roof. From oil changes to brakes, they keep your drive flawless. Call 972-690-6623 today. German Motorworks, engineered for excellence.
3: Oh, Haseena Zulfon Wale Jaane Jahan.
4: सिर्फ हवा में नहीं, स्टाइल में भी उड़नी चाहिए। बॉलीवुड स्टाइल लेयर्स हो, सॉफ्ट कर्ल्स हो या कंप्लीट हेयर मेकओवर, अमरीन सैलून गिव्स यू दैट परफेक्ट हेयर स्टाइल जो आपकी पर्सनालिटी को करे हाईलाइट। बिकॉज ग्रेट हेयर डजंट जस्ट चेंज योर लुक, इट चेंजेस योर कॉन्फिडेंस। मेंशन फन एशिया एंड गेट 10% ऑफ ऑन योर हेयर स्टाइल सर्विस। Call Ambreen at 214-909-6601.
5: Or visit their Instagram, Ambreen Salon, located at Allen and Frisco.
4: Ambreen Salon. Style that moves with you.
6: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.scodialcpa.com.
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है। और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई।
8: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली ऑन रिसर्च में वेरी।
9: घर की याद नहीं आई तुझे जब से?
10: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
11: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
10: सच में बिल्कुल घर जैसा।
11: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुलचास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन अर्विंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
12: इंडिया में घर खरीदना या स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करना अब हुआ और भी आसान। गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो अब फ्रिस्को में। मिलिए मुंबई, पुणे, दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के टॉप डेवलपर्स से। सब एक ही छत के नीचे। 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स एक्सप्लोर कीजिए और अपने प्लान्स के हिसाब से सही प्रॉपर्टी चुनिए। आइए 9th एंड 10th मई को हयात रेजेंसी फ्रिस्को डलास में, सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक। एंट्री और पार्किंग बिल्कुल फ्री। माई स्क्वायर फीट प्रेजेंट्स सबसे बड़ा इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो।

कैसे हैं आप लोग डैलस में? शाम खास? हैव अ प्लान? फैमिली के साथ तो मजा आ रहा होगा, और दोस्त कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे ना। यही तो जिंदगी है। वीकेंड के वीकेंड को जिंदगी ना समझ के हर दिन को वीकेंड जैसा बनाना भी जिंदगी हो सकता है। सो वॉट एवर द सिचुएशन बी, मेक श्योर यू आर ऑलवेज स्माइलिंग, और लिख डालिए अपनी जिंदगी को एक प्यार भरा लेटर। कह डालिए दिल की बात कि डियर जिंदगी, अच्छे हो और अच्छे हो सकते हो, पर जैसे हो मेरे हो।

0: सबसे अलग। मेरी बात सुनते हो, रियली लिसन। काश मेरी लाइफ में भी कोई ऐसा होता। Am I making sense?
1: Not at all. But that'll be 3,000 rupees, please.

Kevana, what you give out, you get back the same. Zindagi ko love you zindagi bol ke to dekhe, phir zindagi bhi aapko yahi bolegi, love you too. That's how it goes. So try it out and see the difference. सुन रहे हैं 104.9 FM फन यूजर रेडियो, मेरे साथ में आपकी होस्ट नवनीता। दोस्तों grahapravesh.com लेकर आते हैं आपके लिए इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो जो होने वाला है मई 9th को और 10th को एट द ब्यूटीफुल हयात रीजेंसी फ्रिस्को डैलस। आप यहां पर मिल सकते हैं टॉप बिल्डर्स को फ्रॉम सिटीज लाइक हैदराबाद, बैंगलोर, मुंबई, चेन्नई, पुणे एंड दिल्ली NCR, showcasing over 200 premium projects from luxury apartments and villas to plots and farmland. Aap agar khoj rahe hain ready to move homes or exciting new launches, aap enjoy kar sakte hain exclusive expo only deals designed just for you. Don't just dream it, own it. Yahi to hai mauka. Mauke pe chauka mariye. बस वेट मत कीजिए, जल्दी से रजिस्टर कीजिए एट grahapravesh.com एंड टेक द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स योर ड्रीम होम इन इंडिया। तो सोच क्या रहे, वो सपना देख रहे हैं तो उसको हकीकत भी तो करिए। टेक द फर्स्ट स्टेप, रजिस्टर, गो सी देम, बिल्ड योर ड्रीम्स। नहीं भी लेना है, जाके देखिए, तभी तो सपने बनेंगे। और वो जब सपने बनेंगे तभी तो लेने का मन होगा, और जब मन होगा तो ले ही डालेंगे। जस्ट सी, इट ऑल स्टार्ट्स विद द सीड। प्लांट तो कीजिए।

पुद्धू समन, दिस ब्यूटिफुल मूवी कपूर एंड सन्स, जिसमें हमने ऋषि कपूर को देखा था एज दादू, ब्यूटिफुली प्लेड ऋषि कपूर, लवली. ये जो गाने कुछ कुछ होते हैं ना, जो हमें ले जाते हैं वापस से, ये फिल्में जो हम छोड़ जाते हैं इस दुनिया में, ये कुछ यादें जो बस रह जाती हैं हमेशा के लिए. क्रिएटिंग मेमोरीज इज़ सो इम्पॉर्टेंट. चाहे आप भी अपने दोस्तों के साथ हो और क्रिएट कर रहे हो मेमोरीज, कुछ पिक्चर्स जो बार बार घूम घूम के आते हैं ना फेसबुक पर, एंड हमें याद दिलाते हैं कुछ बीते हुए वक्त हमारे दोस्तों के साथ, और फिर वो उम्र भी कम लगती है, राइट? यू फील यू वर सो यंग, ओह माय गॉड, सी हाउ यंग वी वर, वी हैड मोर हेयर, वी हैड मोर, यू नो, वी वर स्लिमर और मे बी डिफरेंट टू लुक एट. There's so many things that you feel good about, and that's the best part about this generation or even our generation, or so much with, I'd say, our parents' generation, jahan pe pictures itne nahi tha, social media itna nahi tha. So very few albums had those pictures. Aur hum ghoom phir ke wo albums mein pahunch jaate hain, bar bar ghoom kar wo albums ko hi dekhte hain, chahe black and white se shuru ho aur phir dheere se wo color mein jaye. वो जो गाने, वो जो एल्बम्स थे, दे आर एच्ड इन आवर ब्रेन्स. वो सेम पिक्चर्स आर एच्ड इन आवर ब्रेन्स, और आज के पिक्चर्स बदलते रहते हैं, पर वो भी ज़रूरी है. हर मेमोरी याद रहती है, इतने साल बीत गए ये याद रहता है. आजकल तो नया मीम एक आ रहा है कि किसी ने कहा 20 साल पहले बात याद थी, और 20 साल पहले हमको लगता है 80s में होगी वो बात, लेकिन वो निकलती है 2006. सी इमेजिन हाउ टाइम फ्लाइज. 2000 की बात भी अब लगती है सालों बीत गए, क्योंकि सालों बीत गए हैं. वी आर इन 2026. चेरिश ईच मोमेंट, टाइम फ्लाइज.

0: ब्यूटिफुल राइट इलाही, ये जवानी है दीवानी इसे लिया गया, ये बहुत ही ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सॉन्ग। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों, आप कहीं मत जाएगा क्योंकि ये जो वक्त है आपका और मेरा साथ का, इट इज़ सुपर वक्त जहाँ पर हम 5 से 8 स्ट्रेट फ्रॉम दी हार्ट मिलते हैं जुलते हैं और ये अगेन मेमोरीज बनाते हैं विच आई कैन completely tell you the memories that we create. वैसे अगर awesome है मौसम तो फिर इस मौसम को आप क्या कहेंगे? आज लो जाने वाला है temperature and it will be cooler than last night. 64 feels like 64, high 68 and low 49 होने वाला है आज की रात. और कहीं कहीं आपको thunderstorms जो नज़र आ रहे हैं वो तो नज़र आते ही रहेंगे. कल है सैटरडे 2nd, 76 हाई 52 लो, बट सनी सनी है मौसम. और ये मौसम इस ब्रेक के बाद कंटिन्यू रहेगा.
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क. यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास. साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास. ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax. पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन. ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा.
2: अभी मजा आएगा ना भिड़ो,
3: अपन बोले तो फुल बॉलीवुड धमाका फन एशिया पे.
4: Hi, I'm Vijay Karthik. I've served as a global C-suite executive, led thousands of employees, advised boards, and earned industry recognition for innovation and leadership. My career spans decades of responsible governance, strategic planning, and delivering results at scale. That level of experience is rare in local government. Fisco deserves its most qualified leader, someone prepared from day one. Vote Vijay Karthik for Fisco City Council Place 5. For more information, you can check out my website at www.vjforfisco.com. This is Vijay Karthik, and I approve this ad.
5: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस. ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क. ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न. या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर.
6: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा.
5: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए.
7: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है. नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं. रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में.
8: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ.
9: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
10: Mera retirement plan ready hai.
11: Plan ya hope?
10: Matlab?
11: Matlab hai, plan matlab strategy. होप मतलब देखते हैं क्या होता है.
10: ओके, तो मेरा वाला होप है.
11: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं.
10: क्यों?
11: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है.
8: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी. फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 4696932077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com.
12: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
8: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGPT. तंदूरी फ्लेम, नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
13: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
14: Goodness is a beautiful thing. And good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadaqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.